0: ये आकाशवाणी है।
1: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज प्रस्तुत है श्री कुमार मर्डुर का गायन। संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार पा चुके कुमार मर्डुर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रखर गायक के रूप में जाने जाते हैं। किराना और ग्वालियर घराने की गहरी समझ के साथ साथ अपने पिता पंडित सोमनाथ मर्डुर से मिली तालीम ने उनकी गायकी को एक अनोखा अंदाज दिया है। दिग्गज उस्तादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर, अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मर्डुर ख्याल, ठुमरी, हिंदी भजन, मराठी अभंग, कन्नड़ दास साहित्य, कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मर्डुर। Awarded the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar by the Sangeet Natak Academy, Kumar Mardur stands out as a gifted Hindustani classical vocalist. His grounding in the Kirana and Gwalior Gharanas, along with training under his father, Pandit Somnath Mardur, has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur Atrauli and other Gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, tumri, Hindi bhajans, Marathi abhangs, Kannada dasa sahitya, Kannada vachana sahitya and many other traditions. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
1: Aaj ke is karyakram mein aapke saath tabla par Pandit Satlingappa Desai Kallur aur हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मर्डुर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
2: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री पंचाक्षरी हिरेमठ। Shri Kumar Mardur will begin his vocal recital with Raag Chayanat, Vilambit Jhumra, Inayatahu, Drut Teen Taal, Eri Maliniya, followed by Tarana in Drut Teen Taal.

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करता।
1: You just heard राग छायानट। श्री कुमार मल्डूर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागेना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Rag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी धारवाड़ एंड रिलेड फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।
3: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணி நாகர்கோவில் வானொலி நிலையம் குமரி பண்பலை 101. இன்னும் சற்று நேரத்தில் மனசு மயங்கும் திரை இசை கேட்கலாம்.